9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज़ हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: इस मौके पर अपने अमरीकी हम मनसबों से अलहदा मुलाकात की। उन्होंने जापानी करेंसी येन और दीगर उमूर पर बात की। G20 इजलास के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में जापानी वजीर ख़जाना मोहतरमा कातायामा सात्सुकी ने कहा कि जापानी हुकाम बॉन्ड मार्केट के रुझानात पर कड़ी नज़र रखते हैं। उनके ये तबसरे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब जापान के मायारी 10 साला बॉन्ड्स के मुनाफे तकरीबन 30 सालों में पहली बार 3% से तजावज़ कर गए हैं। उन्होंने मुनाफे की किसी ख़ास शरह के बारे में बात करने से ये कहते हुए गुरेज किया कि ये मार्केट में तय होती है। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर उएदा काजुओ ने कातायामा के हमराह इस ब्रीफिंग से खिताब किया। उन्होंने इंदिया दिया कि जापानी बॉन्ड के मुनाफे में इजाफा आलमी रुझानात से मुंसलिक है। उन्होंने मशरक़ वुस्ता के तनाज़ात और मालियाती पॉलिसी के हवाले से मार्केट के ख्यालात के बायस अफरातज़र के बढ़ते हुए दबाव का हवाला दिया। उएदा ने कहा कि मालियाती इदारे मईशत पर बॉन्ड के बढ़ते हुए मुनाफे के असरात की निगरानी करेंगे। शंघाई तआवुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के सरबराहान ने ईरान से इजहार यकजहती के ऐलान के साथ अपना सरबराही इजलास समेट लिया है। ये इजलास किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में मंगल को ख़त्म हो गया। चीन और रूस की क़यादत में कायम इस बैनुल अक्वामी फ्रेमवर्क में ईरान समेत 10 अरकान हैं। बिश्केक ऐलामिये में रहनुमाओं ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया और तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने पर ज़ोर दिया। बज़ाहिर जापान के हवाले से ऐलामिये में यह भी कहा गया है कि अरकान दूसरी जंग अज़ीम के नतायज को बरकरार रखेंगे और तारीख को बदलने की कोशिशों की मुखालफत करेंगे। इसी दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने शराकत दार ममालिक के साथ एक वसीतर इजलास में शिरकत की। बज़ाहिर अमरीका को हदफ़ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि बड़े ममालिक को बैनुल अक्वामी उसूलों की पासदारी और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करने में कायदाना किरदार अदा करना चाहिए और आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल को ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि रूस तेहरान के मुश्किल दौर में ईरान को ज़रूरी मदद फराहम करने की कोशिश कर रहा है। पज़िश्कियान के हवाले से कहा गया है कि उन्हें यकीन है कि ईरान तमाम पाबंदियों और अमरीका का मुकाबला कर सकता है। सोनी ग्रुप के म्यूज़िक पब्लिशिंग शोबे और 34 दीगर कंपनियों ने AI डेवलपर एंथ्रोपिक के ख़िलाफ़ अमरीकी वफाकी अदालत में दानिश्वराना इमलाक की मुबैना चोरी का मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड AI मॉडलों को तरबियत देने के लिए गैरकानूनी तौर पर कॉपीराइट शुदा मौसीकी और गीतों के बोलों की एक बड़ी तादाद का इस्तेमाल किया है। मुद्दयान जिनमें वार्नर म्यूज़िक ग्रुप की म्यूज़िक पब्लिशिंग के शोबे भी शामिल हैं, हर मज़कूरा सिन्फ के इवज़ $150,000 तक के मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। मुकदमे में कहा गया है कि एंथ्रोपिक की हरकत मौसीकी के उन पब्लिशरों और गीत निगारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। एंथ्रोपिक ने पब्लिशरों के दावों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो अदालत में भरपूर तरीके से अपना दिफा करेगी।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। नेपाल और चीन की सरहद के करीब सैलाबी रेले के मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस आफत को आए एक हफ्ता गुजर चुका है और बारिशों के फ्रंट के साथ साथ कम दबाव के निज़ाम की वजह से शुमाली जापान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

0: जब आप जापान आएं, तो इन्हें इस्तेमाल करते हुए अपने क्याम को दिलचस्प बना सकते हैं। प्रोग्राम में आप जापान की सकाफत और साथी मकामात के बारे में भी जानेंगे।
1: आज का 27वां सबक मुख्तलिफ चीज़ों में से इंतखाब करने से मुतल्लिक है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जापानी डिश रामेन के बारे में बताएंगे, जो अब बाहर भी मकबूल है।
0: काइतो ताम को रामेन नूडल्स के रेस्टोरेंट में लेकर गया है। इस दौरान ताम को मौसीकी सीखने वाला तालिब इल्म यू की याद आ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात वियतनाम में हुई थी, जहां उन्होंने एक साथ रजाकाराना सरगर्मियों में हिस्सा लिया था।
1: तो आइए सबक नंबर 27 का मकालमा सुनते हैं।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
0: वेटर काइतो और ताम से पूछता है,
2: गोचुमोन वा,
1: आप क्या लेंगे?
0: काइतो पूछता है,
2: तामसान नानी सुरु,
1: तामसान आप क्या लेंगी?
0: ताम फैसला नहीं कर पाती और पूछती है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: कौन सा सबसे मजेदार है?
0: काइतो जवाब देता है,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो,
1: मैं मिसो रामेन तजवीज करूंगा।
0: ताम जेरे लब कहती है,
3: मिसो रामेन,
1: मिसो रामेन।
0: ताम को याद आता है कि यूकी ने उसे वियतनाम में क्या बताया था।
4: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो,
1: जापान का रामेन मजेदार है।
4: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा,
1: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
0: ताम यूकी की बात को याद करके कहती है,
3: वाताशी मिसो रामेन नी शिमासु,
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन ने ताम की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है,
1: बल्कि उसके दिल के तारों को छेड़ दिया है। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, कौन सा सबसे मजेदार है?
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
0: अगर आप इसे याद कर लें, तो इसे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजों में से सबसे बेहतर के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं।
1: दोरे के मायनी है कौन सा, इसके बाद का गा जाहिर करता है कि दोरे जुमले का मौजू है, इचिबान का मतलब है अव्वल या सबसे ज्यादा, और ओइशी यानी मजेदार, चुनांचे इचिबान ओइशी का मतलब हुआ सबसे मजेदार, और आखिर में देस का लगाते हुए उठान के साथ अदायगी के जरिए जुमला सवालिया हो जाता है। आज का नुक्ता, मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर की निशानदेही करने के लिए इच्चीबान का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जायके में अव्वल या सबसे मज़ेदार के लिए मज़ेदार यानी ओइशी से पहले इच्चीबान लगाकर इच्चीबान ओइशी बनाया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर के मुतालिक सवाल करने के लिए दोरे का इचिबान पूछा जाएगा, इसमें दोरे के मायने है कौन सा,
0: यानी खाने पीने की कुछ चीजें सामने हो और उनमें से सबसे मजेदार चीज कौन सी है पूछना हो तो दोरे का इचिबान ओइशी देसु का पूछेंगे, ठीक है ना?
1: जी बिल्कुल ठीक।
0: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
5: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे का इचिबान ओइशी देसु का?
0: जी सामईन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब सबसे बेहतर के इंतखाब से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक गाहक जापानी मिठाइयों की दुकान में है और बेहतरीन मिठाई का इंतखाब करना चाहता है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
0: कौन सी सबसे मकबूल है?
1: निंकी गा अरिमासु यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है,